तेरे कदम जहां पड़े सजदे किए ते यार ने, मेरे कदम जहां पड़े सजदे किए ते यार ने, मुझको रुला रुला दिया जाती हुई बहार ने।